0: Produced by Grace Entertainment and Rallo Events, Radio Partners, Sunrise Radio.
1: रिमिटली से अपने प्रियजनों को पैसे भेजें और दूर रहकर भी उनकी दिवाली को खुशियों से रोशन करें। चाहे त्योहार की तैयारी में मदद करना हो, जश्न का मजा दोगुना करना हो या थोड़े ज्यादा पैसे भेजने हो, उनकी दिवाली का हिस्सा बने चाहे आप जहां कहीं भी हो। लाखों लोगों का भरोसेमंद रिमिटली ऐप पैसे भेजने का एक तेज, किफायती और सुरक्षित तरीका है, ताकि आप उनके साथ खुशियां बांट सकें। रिमिटली ऐप डाउनलोड करें और अपने पहले मनी ट्रांसफर पर खास ऑफर पाएं। रिमिटली यूके लिमिटेड को FCA द्वारा विनियमित और अधिकृत किया जाता है।
2: When cloaked figures conspire, when no one knows who they can trust, when you can't wait to find out who's made it to breakfast.
3: I can't believe they got rid of him.
4: Surely that's going to give her away.
3: Yeah.
4: Or will it?
3: You were right last week.
2: Nothing brings us together like great TV. And the TV license covers you to watch all TV channels plus BBC iPlayer. So you can revel in all the devious mind games. Search TV license together.
5: The first time you saw a red squirrel. The beautiful colours of autumn. And blackberry stained fingers. A wrong step in a stream. Muddy trousers. And having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.

0: give your business a boost. Manage all your Facebook, Instagram, TikTok page with PageCrowd. PageCrowd will post every day to generate business leads. Packages start from just £99 per month. No contract and cancel any time. Call now on 0208 242 4700 or visit pagecrowd.co.uk.
1: Modern. Retro, understated, overstated, haughty, but...
2: These are just a few of the hundreds of looks you can create thanks to the huge choice of glasses starting at only £15 at Specsavers. Anyone familiar with our determination to provide a lot for a little money won't be surprised at how many looks there are.
1: Tech bro, cheerful goth, cool vicar.
2: Specsavers, a lot for a little.
1: Nordic chilled and Riviera chic.
2: Has he finished?
1: Vintage 60s, 70s,
2: no, he hasn't.
1: 80s, 90s.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
4: इस फेस्टिव सीजन पे मिठाई और फरसान के लिए याद रखिए एक ही नाम शायोना जिनकी घर जैसी यूके में बनी ताजी मिठाई और फरसान का जवाब नहीं सब कुछ फ्रेश एंड ऑल एट अ स्पेशल प्राइस मठिया एंड चोरा फली 3 for £4.50 और घुगरे का तो जवाब ही नहीं
5: अवेलेबल एट ऑल शायोना स्टोर्स विजिट आवर न्यू हनी पॉट लेन स्टोर फॉर ऑल योर स्नैकिंग नीड्स इंक्लूडिंग फ्रेश हॉट फूड ऑल्सो सिलेक्टेड लाइंस अवेलेबल एट मॉरिसन्स टेस्कोस एंड सेंसबरीज थ्रू आउट द दिवाली सीजन और ऑर्डर ऑनलाइन फ्रॉम शायोना UK.com.
6: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union. Share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third party charges may apply.
0: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020 8574 7777.

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

आज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: दोस्तों आप सभी का स्वागत है खेलो और जीतो के मेगा एपिसोड में। बम्पर प्राइज जीतने के लिए अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो क्या आप सवाल के लिए तैयार हैं?
1: जी पाजी।
0: ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
2: सर जी प्लीज, मैं फोन ऑफ फ्रेंड यूज करूँगा और अपने डैड को कॉल करना चाहूँगा।
0: कंप्यूटर जी, इनके डैड को फोन लगाया जाए।
3: हेलो
2: पापा जी।

0: I do think the soundtrack of Om Shanti Om is exceptional. Such beautiful gems. राहत फतेह अली खान, रिचा शर्मा, जग सुना सुना लागे। सनराइज रेडियो पर इस घंटे का आपकी पसंद ऑफ द आवर।
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: हेलो यूके वालों, बिग बॉस इज बैक और इस बार घर वालों को मिलेगा एक नहीं टू चांस। बिग बॉस ओनली ऑन कलर्स।
3: वॉच बिग बॉस 20 टुनाइट एट 9:30 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार।
4: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.
0: After Rahat Sahab from Om Shanti Om, the late great Nusrat Fateh Ali Khan, but this time round, remixed by Rishi Rich. Yeah.

0: taken from the hero love story of a spy. Alka Yagnik, Hariharan, Tum Bhi Na Mano on Sunrise.
1: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
2: Hello UK, Wallo, Big Boss is back. Aur is baar ghar walon ko milega ek nahi, two chance. Big Boss only on Colors.
3: Watch Big Boss 20 tonight at 9:30 PM only on Colors TV and Jio Hotstar.
0: सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा हिट दिया टेकन फ्रॉम द फिल्म धुरंधर. आफ्टर टेलिंग यू अबाउट दिस सॉन्ग, फिर से गेटिंग अ ग्रैमी नॉमिनेशन नहीं कंसिडरेशन, वी हैड टू एंजॉय टुगेदर ऑन दिस शो, राइट? गुड मॉर्निंग.

दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। जहां भी आप सुन रहे हैं, जो भी इस वक्त कर रहे हैं, होप यू हैविंग अ मैजिकल वेंसडे। गुड मॉर्निंग।

0: 1985 की फिल्म एतबार का ये गाना, भूपिंदर सिंह, आशा भोसले, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है ऑन सनराइज. गुड मॉर्निंग.
1: Listener's Choice brought to you by Star Plus.
2: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
3: Watch India's top 1% every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
4: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.
0: निर्मल जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. प्रीतम एंड पेड्रो कम्स हाईली रेकमेंडेड. मैंने अभी देखी नहीं है, बट पीपल सेड दैट दे हैव एक्चुअली डन अ वेरी गुड जॉब. दिस ऑफ कोर्स वाज डायरेक्टर राजकुमार राव, राजकुमार हिरानी. राजकुमार हिरानी इज अ फोरे इनटू द ओटीटी स्पेस, ऑल्दो ही हैजंट डायरेक्टेड इट, ही हैज प्रोड्यूस्ड दिस एंड ही लॉन्च्ड हिज सन एज एन एक्टर इन दिस प्रोजेक्ट. एंड पीपल आर सेइंग दैट दे हैव डन अ रियली गुड जॉब. इट्स सेट इन गोवा. बट कमिंग बैक टू द अदर राजकुमार राव, वमिका गब्बी के साथ उनकी फिल्म प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम, इज आउट इन सिनेमाज दिस फ्राइडे. ही हैज अ सॉन्ग फ्रॉम दैट फिल्म, तुझ में बसी है मेरी जान, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए. उसमें भी ये लाइन है, तुझ में बसी है मेरी जान, राइट? एंजॉय दिस.

Yeah, भाई तेरा बस लिख गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
1: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी सीरियसली माही
2: यस बेबो
1: कैच क्या है
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट नो कैच
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ग्रीन स्ट्रीट ईस्ट लंदन एंड ब्रॉड Way, South Hall.
3: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union. Share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
4: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn, and blackberry-stained fingers, a wrong step in a stream, muddy trousers, and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.
5: This will be my very last season of Coffee with Karan. So join me and have that one last cup of coffee with me.
6: Join Karan Johar and his esteemed guests for the final season of Coffee with Karan, streaming now exclusively on Jio Hotstar. Download and subscribe now.
7: Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Pepe's with over 260 stores. You're sure to find one near you. Fresh flame-grilled chicken with six tasty flavors. It's Pepe-licious. This is Sunrise, the UK's biggest.

इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और वेल्स में अधिक गीला

0: पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
1: दिस टाइम ऑफ ईयर मॉम्स ऑलरेडी प्लानिंग द मिठाई, योर आंटी इज काउंटिंग डाउन द डेज। गुड थिंग वेस्टर्न यूनियन इज फास्ट एंड इजी बिकॉज दिस फैमिली डज नॉट वेट। सेंड इन मनी डायरेक्टली टू देयर बैंक अकाउंट, मोबाइल वॉलेट और फॉर कैश पिकअप। सो दिवाली इज एग्जैक्टली एज इट शुड बी। वेस्टर्न यूनियन, शेयर द लाइट लाइक यू आर देयर। विजिट पार्टिसिपेटिंग पोस्ट ऑफिसेस, योर एक्सचेंज और अदर रिटेल लोकेशंस। Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
2: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn and blackberry-stained fingers, a wrong step in a stream, muddy trousers, and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.
3: This is Sunrise, the UK's biggest.